रम्यसिंहासनस्थं पदम्भोजतेजस्पुरधिप्रदेशं विदिन्द्रादिदैवैः सदा स्तूयमानं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम्।

साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवाधिदेवा जगत्र जीवा परियेसी केशवा विनंत।